आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी तेरे द्वार, लता मंगेशकर सिंगिंग फॉर वैजंती माला इन द मूवी. वेरी क्विकली बाय द वे, वन ऑफ द सपोर्टिंग एक्टर्स फॉर दिस मूवी इज जगदीश राज. ही प्लेज द रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी एंड ही होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्टिंग इन अबाउट 150 हिंदी बॉलीवुड मूवीज एज अ पुलिस ऑफिसर. टॉक अबाउट टाइप कास्टिंग. द थर्ड सॉन्ग ऑफ द मूवी, लेट मी गिव यू बैकग्राउंड अगेन. Vajantimala and Dilip Kumar take a liking to each other. They meet routinely, visit each other at a set time in the mountainous area. And then there is a annual mela where Vajantimala performs an exotic group dance. That's the third song. Dilip Kumar and Johnny Walker are part of the audience. Dilip Kumar, after the song is done, saves a child from being trampled by Pran's horse. Hurts his hand. Vajantimala ties a piece of cloth, invites him to her home so that her father, played by Jayant, can apply medicine. When Jayant learns that he's the employee of the timber estate, he angrily tells Dilip Kumar to get lost. But the song is Zulmi Sang Aankh Ladi. Here's the song.

घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के आज मिलन की बेला में। लता मंगेशकर अगेन सिंगिंग फॉर वैजयंती माला इन द मूवी मधुमती 1958। सलील चौधरी म्यूजिक, शैलेंद्रा's लिरिक्स, एंड आई एम श्योर यू आर इम्प्रेस्ड बाय शैलेंद्रा's पोएटिक talent, having listened to some of these songs thus far and more to come. What happens is, you know, the romance of Dilip Kumar and Vajinti Mala progresses, and at one of their meetings, melodious duet, Dil Tadap Tadap Ke Keh Raha Hai Abhija, Tu Hum Se Aankhe Na Chura, Tujhe Kasam Hai Abhija. This melodious romantic song picture on Dilip Kumar and Vajinti Mala, fifth song in the movie, here it is.

0: ली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या
0: जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

द लास्ट द 1 मिनट वर्शन बंद हुआ ये द्वार कभी ना, जो कितने ही बीते सब द्वारों पर हारने वाले इस द्वारे पर जीते. एक्सटेंशन ऑफ तेरा मनवा क्यों घबराए मूवी. दिस 1 मिनट वर्शन इज पिक्चराइज ऑन वैजंतीमाला लीला चिटनिस एंड सुनील दत्त एट द एंड ऑफ द मूवी एज लीला चिटनिस एक्सेप्ट वैजंतीमाला एज हर डॉटर इन लॉ. द नेक्स्ट सॉन्ग is Lata Mangeshkar solo, melancholic song picturized on a sad-looking Vajantimala in her palatial kotha lamenting the treatment of women, particularly her life as a prostitute. Binaka number 25, Sahil Ludhianvi earned the Filmfare Best Lyricist nomination, but he lost to Shailendra for Yehudi song, Ye Mera Deewanapan Hai. The song is Aurat Ne Janam Diya Mardon Ko, Mardon Ne Use Bajar Diya. Hear the song.

औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। सार लुधियानवी पेंड ब्यूटिफुल गजल लमेंटिंग द फेट ऑफ वेमेन prostitutes at least in this context and before well let me introduce the next song again sadhna this is a qawwali kind of song picture a bunch of people waiting for a mujra by vajanti mala and she is reluctant to come out to perform balbir and mohammad rafi are the main singers of course as I mentioned datta nayak provided the music sar ludhiani's lyrics the words are आज क्यों हमसे पर्दा है जी आज क्यों हमसे पर्दा है आज क्यों हमसे पर्दा है जी आज क्यों हमसे पर्दा है एंजॉय द कव्वाली टाइप ऑफ सॉन्ग